बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे ओढ़े वस्त्र का

अकाल मूर्त अजूनी सैभंग और प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक होशी भी सच चक्र के अरवर्ण जात हर पात नहिले रूप रंग हरी पीर भूकस्त है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज कह जय इंद्र इंद्राण शाहो शाहन गणिज फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत बंटन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूज दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छुट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आवारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दया श्रद्धा पूरी सतगुर हुई दया ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दया दुख न जानिया सतगुर हुई दया हर रंग माणिया सतगुर हुई दया जमका डर के हा

अपने परत करें प्रतपाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सदियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बेकार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे।

दारू थी इस माह है, कृपा करे जी अपनी का गुर का शब्द माह है। नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेम की संतोखी जिन सच सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीश अकला ने।

जूठे जूठे मुख वसे नित नित होए ख्वार सूचे नाखी है बैंड पिंडा तो सूचे से नानकार जिन मन बसे असोए पौड़ी तुरे पलाने कौन वे हर रंगी हर सवार आगूठे मंजुमार लाए बैठे कर पसारे आज जगत मकान दे हर पुजन नाई हारे आकर प्रकाश पाया विख महलत मरण सारे।

आटर तीर दे नावे उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते बड़े संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाई किसे केरी बात सचे नाम दरबार प्रसन्न मंगा जब दे ताका है दीवाने को कल में का हम तुम्हारे दर ले लिखा पीर छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों कर आप ही तय धारी है देख जी तया बना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला होआ स्याओ फिर तरेगा किवें मैल नाल ते पारा हो गया।

जे तरना है भवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा।

सच वंडन वाला, सच दा प्रचार करन वाला, नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, चढ़िया सोधन धरत लुकाई, भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक। कहन लगे मरदाने आ चल, तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा, लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना, मैं सच्चे नू रिझा लवांगा, ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावा। तो लंबे दी धरती नू तार दे गरीब नवाज पातशाह। ओथे लागे एक नगरी, एक हवेली लागे जाके गरीब नवाज पातशाह।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़िया बहने गुरमुखा फिर अस चलते बनने। पर भोजन ता कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे कर देने, जथा शक्त सेवा भी कर दा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलता है। सतगुरु कहन लगे पे फिर ता तेनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम कर दे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम कर दे हो, कदे अपने वाल वेंदा है, कदे बाबे वाल वेंदा है।

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कहन लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं।

एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे को छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकता।

मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है। शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले किथे जा रहे हैं? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, पे सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है? कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन है? मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां, ए राजे दा कोई खास निकटवर्ती होना, ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए। जा भाई नंघ जा, जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन लई। बंदे दा मन बड़ा लालची, होर बेंदा पर कुछ होर मिल जाए। हनेरा सी, हाथ मार दें मार दें, टोंदे हैं टोंदे हैं, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते वो जबान नाल लाया ते ओदे विच लून सी। बाबे दा बचन चेते आ गया पे लून खा के हराम नहीं करना। भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है,

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

एक कसम लिख के भेजी के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा।

उसने कुरान शरीफ की कसम खादी। पहाड़ी राजिया ने आटे की गऊ बना के कसम खादी है ये साडे ते हमला नहीं करनगे। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साडे ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां कुछ दिन बीते, भाई मान सिंह इसने बेनती की थी, महाराज पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहिबां ने कहा मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे कोल आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख।

असी तेरे सिख ने, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नो प्यारी समझे, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

अपने घरां नूं पहुंचे। घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहिबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड़ के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड़ के

सिख ने। ए गल करांवालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड्ड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के। एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे? पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीवना को जीवना है। एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे। अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नूं छड़ के आए हो, मौत तो बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे। इस तरह करो, इस साड़ियां चुनिया ले लो, पग्गां ला दियो, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दियो, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई

मिया खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता सिखी छड़ दिती पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है सिर झुका के जीवना को जीवना है। धर्म वास्ते मरना धर्म दे राह ते चल के मरना देश कौम दी सेवा कर

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबा ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमां तोड़ दितियां, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमां तोड़ दितियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

माछीवाड़े आए, माछीवाड़े तू चले कई जगह होंदे साहब जी, जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे। संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां, ओही रौनकां फिर लग गईयां। पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं, जदों गुरु साहिबां दे धर्म सुपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया।

कि दूरों कोई देखे ते पता लगे कि गुरु दा दल ऐस पासे। खिदराने दी टाप तो थोड़ी दूर एक उची टिब्बी ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघा समेत मोर्चा संभाल के बैठ गए। एक सिख दरखत ते चढ़े

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के

पवित्र गाहे रणन कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान, लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नूं अपने पैरां थले लताड़िया। चले वीर सोउ बड़े उत्साहे, परे शस्त्र मारे महा जंग माहे, कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले, चलाकी करन ते सोछाले उछाले।

सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए। साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया, कड़े म्यान तेग गहे अत ढाले, चलाकी करन ते सुछाले उछाले, आखिर चटापट जुटे लटा लट होए, सटापट सुटे कटाकट जोए, कटाकुट कटे चटापट मारे, खटाखट खोटे हटा हट हारे, अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखेया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है, ना कोई गोली चल रही है, इसने फतेह दा डंका बजाया, वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है, सैंकदा पे है, सह टुटदे ने। हुण भाई मान सिंह अरदास पिया करदा है।

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं।

कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है? पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने।

कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

सत्संग बड़ा मुश्किल आ गया, चौखा मुश्किल, ये गया नहीं जाता। इनी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गाने लगे, ते माली गवड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा हुण जान बड़ा विकट ते टेढ़ा जिहा है। आप तो सुन।

तिसते मुख नहीं मोड़ियो जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उहाहों को दौड़ियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जानियो

मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा, जियो पिंड सब रास्त मारी तेरा।

सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी उदरस मैल बिन सजाए हो मैं दुख है जन्म का

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां बुरियां वाजे।

मन विच वस जावे बड़ियां बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़ियां वडियां, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलता। साडे सारिया दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवेगा कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां, साहिबंत कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तां हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, ये किवें हो सकदा? ओ एक अवस्था है। कोई उसनू अनहद नाद दी गल करदा, कोई उसनू इलाही नाद दी गल कह के करदा, कोई किसे ढंग नाल दसदा है, लेकिन ये बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद दी अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त भी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह भी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा वगार जापदा, बोझ जापदा। शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं बेनती करा बच्चे नु स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चिया वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चिया दे अंदर ए शौक पैदा करता जांदा है, पढ़ेगा बहुत वड्डा अफसर बनेगा, बड़ियां तरक्कियां करेगा, ओह चा लै के तुरदा। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिया बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, ओनू एक बारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उथे जाके बहिंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाउंदे ने उहदी समझ तों बाहर हुंदा, उह पहला पहला बड़े परेशान हुंदा, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर हन उह बोझ जापदे ने। लेकिन चार दिनां बाद उह जिहड़ा बोझ है उह ज्ञान दा बोध दा एक सोमा बन जांदा है, फिर उही अक्षर मौज बन जांदे ने। उहनां अक्षरां बिना नींद नहीं आउंदी, जद तक कुछ पढ़ना लवे उहदी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापदी। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेडे कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, केड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह बेनती की स्कूल जान वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, ओ वरिया बत्ती पंद्रह पंद्रह बीह बरे बोझ ही धोंदे ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे भी ने, रोंदे दुखी होंदे हो, कई वारी ओ फेल हो जांदे ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं हुंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उन्हां दे माता पिता उन्हां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदे विगार कटदा, तू कसीट के तुरिया आउंदा, वैसे पढ़न वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋਕ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਫਲਣਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾ ਤੇ, ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां, ओदी महान कृपा नाल सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात हो के लोग इन मथे टेकते ने। हैं ए क्यों? बंदे दा सुभा है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करदा, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई के इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पा के गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। ता आओ प्यार नाल सर्व

फर्क समझ के कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं। ये सिख धर्म का ही उपदेश है, धर्म के नाते लड़न वाले हो

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो बने हैं। ते फिर भाई फर्क की है, फिर ये झगड़े क्यों नहीं?

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहब जी पानी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचों जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अति अगे भाई साहब की कहते हैं।

भाई साहब जी कह रहे हैं, राम रहीम कहाइंदे एक नाम। हिंदू राम कहंदा है, मुसलमान रहीम कहंदा है। राम रहीम कहाइंदे एक नाम, परमेश्वर एक है उदे नाम कई। हिंदू राम कह रहे हैं, मुसलमान रहीम कह रहे हैं, पर वो एक है। दोए राह भुलाने, पर देखो ये दोनों किवें सच दा राह भुल गए ने, और परमेश्वर दे नाम ते एक दूसरे नाल झगड़ा पै करते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता है। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पे लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

उपदेश दिए हुई हो रहे है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो। ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने उन्हां दे राह छड़ दियो। भाई साहब जी बयान करते हैं, मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाण वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकदा है? कदे नहीं लग सकदा। इत्थे एक गल याद रखनी, हर कौम दे विच भैड़े बंदे हुंदे हन, पर सारियां कौमां नूं माड़े कह देना यह ठीक नहीं। हर कौम विच कोई ना कोई भैड़ा बंदा जरूर हुंदा है, पर सारी कौम नूं माड़ा कहना यह इंसाफ नहीं। भाई गुरदास जी बयान करते ने वो गल्लां जिहड़ियां इतिहास है और जो सच्चाई

धर्म विच रोजे ईद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ये जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

मोम वर्गा होना चाहिए। जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख

और दूसरे पासे ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है हर पासे परमेश्वर है ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है फिर ते इंसान ही हुई तो वेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे नाल लड़ा

नानक साहब कहने लगे, बाबा आखे हाजी है भाई सुनो, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, जे अमल चंगे नहीं पावे वो हिंदू है पावे वो मुसलमान है उन्हना नु रोना ही पवेगा, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर है ओदी निगाह विच नाम दे नाल कोई नहीं पूजिया जांदा, उत्थे ते जिहदे अमल चंगे ने उन्नू ही आदर मिलेगा।

गुरु साहबान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ए इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकन वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फटकारा पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म दी रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और ए जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा ओहदा जीवन सफल होवेगा।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहते अकह कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।